0: ओम सगुण ब्रह्म सिद्धिप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म सिद्धिप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महेश्वरानंद स्वामी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You're here.
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमाम्यम ओम दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपन सजते सर्वं संध्या दीपम सर्व सत्यम।

0: श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय,
0: देवपुरी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की।

0: अलकपुरी जी महादेव की। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामान्य स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

0: ने कि उनसो प्रसाद
1: प्रसाद
0: हाथ ग्रोसे वर्ट
1: इमा वेलिको व्रेडनोस्त
0: नून द प्रसाद मुस निक्ट क्वांटिटी साइन एस इज अ क्वालिटी
1: प्रसाद निये कोलिचिना वेच क्वालिटेट
0: वा नूर एन

0: आने की अलग पुरी जी महादेव देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर ओम शांति शांति शांति
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: भगवान की अलकपुरी जी महादेव, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देवा की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: You do it. Puspa, one version. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

ओम भोले श्री नारायण भगवान की जय, सतगुरु देव की जय। ओम बोली श्री नारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, हिंदू धाम साम्र सदगुरु स्वामी माधवरण जी भगवान की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय।

0: श्रीदेव पुरुषा भगवान की जय।
1: वेरी नाइस, थैंक यू हरिपुरी जी, वेरी गुड मंत्रा भजन एवरीथिंग, यू आर परफेक्ट एवरीथिंग, कुकिंग ऑल्सो, क्लीनिंग ऑल्सो, वर्किंग ऑल्सो, भजना ऑल्सो, एवरीथिंग वेरी गुड, थैंक यू। हरिओम।
2: हिमालयंसी देवतार श्री अलकपुरी जी महादेव
1: देव की जय।
2: देवदी देव श्री देवपुरी जी
1: महादेव की जय।
2: आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी
1: की जय।
2: हिंदू धर्म समृद्धि स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: श्री विश्व गुरु परहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

0: श्री अलकपुरी से महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीनानंद भगवान की जय।
1: हिंदू धर्म शर्माशी माधवानंद पुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी
0: गुरुदेव की जय।

0: पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिब्रज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय
1: श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी महाराज की जय।

0: की जय। राज्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

सर्वप्रथम सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आप सभी साधकों बुद्धिजीवियों को प्रणाम करता हूँ। माई सेल्फ DC सुरंगानंद दिव्यराज, गिटारिस्ट ऑफ अनूप जलोटा एंड रेडियो TV। थैंक्स। आई एम फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू गुरु वंदना।

0: हरि ओम हरि हरि ओम। धन्यवाद।
1: थैंक्स। प्रणाम। धन्यवाद। समय हो तो मीरा का या कबीरदास जी का या अनूप जलोटा जी का 15 मिनट देंगे, 10 मिनट। ओके। माय गुरु अनूप जलोटा इट्स भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।

आने लगी महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन।

ओढ़ी शंका मत करिए, ये दो दिन तो कुदी चादर ओढ़ शंका मत करिए, ये दो दिन तो कुदी।

प्रीत न कर जो को। मीरा कहती है, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, अरे थारा देसा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, नहीं भा थारो देसड़ लो रंग रूडो।

शांति। सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। एक बार इफ यू वांट। थैंक यू।

प्यार सदगुरु जी मोर नैया लगा दो पार, गुरु जी मोरी नैया लगा दो पार।

गुरु महेश्वरानंद जी की शरण में, सुरंगानंद दिव्यराज नाथ शिवानंद अजमेर, शिवम शारदे कला केंद्र।

0: जी गुरुदेव
1: मिला,
2: एक महीने पहले आए थे,
1: पूरा पूरा परिवार आया था आपके शरण में, बड़ी खुशी है। हाँ मैं तो चलेगा, लेकिन आप, मैं नाचीज कुछ नहीं आता। हरिओम।

सतगुरु साहिब देवपुरी सा, सतगुरु साहिब देवपुरी सा, सब संतन सिर ताजे, सब संतन

संदेशा, मैं हूँ जैसो को तेसरे सदगुरु दियो संदेशो, नहीं जीव ईश ब्रह्माया में केवल एक अजाया रे, ये महान

सो ये गूंज भेद कहे गाथा श्री स्वामी दीप फरमाया रे बड़े भागी जन सुने रो मोरा सदगुरु दियो संदेशो रे मैं हूँ जैसो को तैसो नहीं जीव ईश ब्रह्म माया में केवल एक अजाया रे ये महान सत उपदेशो नहीं है ओम सोम।

0: की जय।
1: जय परशमादेव
0: की जय।
1: निष्कारण भगवान की जय। हिंदुधर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद
0: जी भगवान
1: की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस
0: की जय। गुरुदेव की जय। शांति शांति शांति।
2: हरिओम
0: हरिओम। अभी पहला मौका है, पूरी पार्टी लाऊंगा साजो सामान सहित जब आदेश करेंगे आप। और मुझे तो आपकी शरण में देश विदेश में आपके आश्रमों में जहाँ आप आदेश करो।
1: कमरा दे दिया उनको।
0: रुकूंगा, आप जब तक कहोगे रुकूंगा।

शांति शांति शांति। सद्गुरुदेवाय नमः, मातृता गुरुदेवाय नमः, भारत भूमि नमः। ओम।

आने की। सो द सेम शिवा एंड पार्वती दे वेर पासिंग थ्रू वन विलेज. इट इज सेड द स्पिरिचुअल डिवाइन इनकार्नेशन ऑलवेज दे लुक यंग एंड ब्यूटिफुल. सो दो पार्वती

0: ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशयानंद स्वामी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You here?
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

ज्ञान की देवाधिदेव देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी महादेव जय। ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम। हम सब दास प्रभु